0: की तूर करो स्नान
1: साध उपर जाइये करवान
0: साध सेवा वड भागी पाइये
1: साध संग हर कीर्तन गाइये
0: अनेक बिगंते साधु राखे
1: हर गुण गाय अमृत रस चाखे
0: ओठ गही संत।

0: जनगत पाए।
1: रूप सत जाका सत अस्थान,
0: मूर्ख सत केवल प्रदान,
1: करतूत सत सत जाकी वाणी,
0: सत पुरख सने समाणी,
1: सत कर्म जाकी रचना सत,
0: बोल सत सत उत्पत,
1: सत करणी निर्मल निर्मली,
0: जिसे बजाए तिसे सत पली,
1: सत नाम प्रभु का सुखदाई,
0: विश्वास सत नान गुरते पाई,
1: सत बचन साधु उपदेश,
0: सत जन जाके हृदय प्रवेश,
1: सत नृत्य पूजा जे कोए,
0: नाम जपता की गत होए,
1: आप सत किया

0: जब निर्गुण प्रभु सहज सुभाए,
1: तब से साध कहो के तठाए,
0: जब आप है आप अपनी जोत तरह,
1: तब कवन निधन कवन कत डरे,
0: अपन चलते आप करने हार,
1: नानक ठाकर अगम पार,
0: अविनाशी सुखे अपने आसन,
1: जब मरण का कहां विनाशन,
0: जब पूरन करता प्रभु सोए,
1: तब जम की त्रास कौन के सोए,
0: जब अभिगत अगोचर प्रभु इका,
1: तब चितर गुप्त कुछ पूछत लेखा,
0: जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे,
1: तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे,
0: अपने आप ही चर जा,
1: नानक अपन रूप आप ही उपर जा,
0: जय निर्मल पुरख पुरख पत होता,
1: तय फिर मैल कहो क्या तोता,
0: जय निरंजन निरंकार निर्वाण,
1: तय कौन कौन मान कौन अभिमान,
0: जय स्वरूप केवल जगदीश,
1: तय शाल क्षेत्र लक्त कौन कीस,
0: जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे,
1: तय किसे पूक अवंतर बतावे,
0: करन करावन करने हार,
1: नानक करते का नाही समार,
0: जब अपनी शोभा अपन संग बनाई,
1: कवन माई बाब मित्र सुत पाई,
0: जय सर्व कला आप है परवीन,
1: तय वेद कतेव कहा को चीन,
0: जब अपने आप और धार,
1: सगल सगल कहा विचारे,
0: जय अपन ऊंच

तुम करो, सिख उबार या सिख संगरो, दुष्ट जिते उठवा तो तपाता, सकल मलेश करो रण काता, जे अस तुझ तब सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे, पुरख जमन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो काल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट नह है, रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला, कृपा दुष्ट तन जाहे ने हर हव, ताके ताप तनक मैं हर हो, रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट शब सके न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा, जिन नर नाम तिहारो कहा, दार्द दुष्ट दुख ते रहा, खड़ग

भोगते लेहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता। किलबिग सकल देह को हरता, दुष्ट दुखियन को शाय करता। श्री अस्तु जप हे दयाल्ला, पूर्ण करा ग्रंथ तकाल्ला। मन वाजत बल पावे सोई, दुखनाथ से व्यापत कोई अड़ल्ला। सुने गुंजो याहे सुरसना पावई, सुने

का है। चौपाई संबत सत्रह सहस पुण जय अर्ध सहसों तेन कह जय भाद्र सुधी अष्टमी रववारा तीर्थ सदर्व ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्रोपाख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री पुभ संवादे

करो भरत भारा, तुम साहिब मैं किन कर थारा। दा जान दे हाथ उभारो, अमरे सबैरियन संगारो, प्रथम तरो भगवत को ध्याना, बहर करो कविता बिदनाना। किशन जथा मत चरित्रो चारो, चू गए कबरे हो सुधारो, कभी बाज दोहरा।

ताल विजन वस्तु पयो सत्संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सदारो जे को खावे जे को पुंछाए तिसका हुए उदारो ए वस्त जी नह जाई नित नित रा गुरु धारो तम संसार चरण लग तरियाए

0: इतनी सेवा प्रवान करने जी, कीर्तन कर दिया भुला दी माफी बख्शने बुलाओ फतेह। आओ अगला प्रोग्राम शर्म करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: गुरु दरबार विच बैठी गुरु प्यारी साध संगत जी बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन्नवादी हाँ सत्कार योग ज्ञानी गुरप्रीत सिंह जी मुख सेवादार, ज्ञानी जगतार सिंह जी, ज्ञानी जुझार सिंह जी, जिन्हां ने बड़ा ही रस भिन्ना कीर्तन सरवण कराया है। इस तो पहला श्री सुखनी साहिब की बाणी पढ़ी गई है। परिवार वालों अमरिंदर सिंह रवीना कौर वालों अपने बेटे तेजवीर सिंह के जन्मदिन की खुशी विच श्री सुखनी साहिब की बाणी पढ़ी गई। उस तो उपरंत सोधा रहरा साहिब की बाणी सत्कार योग ज्ञानी गुरप्रीत सिंह जी हुणा ने आप संगतां नूं सरवण कराई। आरती कीर्तन बड़ा ही रसपिन्ना कीर्तन आप संगतां नूं सरवण कराया। मैं इन्हां सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा। इस तो पहला कि मैं बच्चे तेजवीर सिंह दे माता पिता नूं बेनती करदा कि वह गुरु घर की बख्शिश सरूपा ललन। नाल ही मैं बेनती करदा सत्कार जो भाई अंकद सिंह जी जो आप संगतां नूं कथा सरवण कराउणगे। जे परिवार नहीं इत्थे बच्चा नहीं वह बाद विच अपना आके सरूपा ललन। आओ कथा ना जुड़िए कथा सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा ख्याल आ गया, आ जाओ सरूपा ले लो, उस तो बाद फिर कथा शुरू होएगी। आ जाओ।

माया मोह परम पै पुल्ले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेहि मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास रखो हो शरणाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास रखो हो शरणाई जहां नाम मिले तह जाओ

बूझो नहीं काट मह जियो के पियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान विरल कर दे, परम सन्मान योग सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सतगुरां दे संध्या दे इस गुरमत दीवान दी आप जी हाजरी भर रहे हो। हजूर दे अमृत बचन कीर्तन आप जी ने सरवण कीता है। भाई साहब जी ने कल भी गुरु रामदास जी दी सिफत विच सवैयां दा कीर्तन कीता ते अज भी समाप्ति उन्होंने सतगुरां दे इस बचन नाल कीती। राज जोग तखत दियन गुरु रामदास, आप संगत ने नाल गायन भी कीता है। मैं कल भी आप जी नूं बेनती कीती सी गुरु रामदास जी दी सिफत बारे, हुण जदों भाई साहब गा के गए, क्योंकि मैं लड़ीवार कथा कर रहा हाँ ते मैं आप जी नूं जदों शुरू करना कथा मैं ये बेनती करना हुन्ना, मैनूं ज्यादा समा किते टिकण वास्ते नहीं मिलदा ते जे मैं ओही कथा रिपीट करी जावां ते मेरा ख्याल मैं संगत दी सेवा नहीं कर सकांगा पूर्ण तौर ते। ते चित विच हुंदा लड़ीवार कथा नाल असी भी सतगुरां दे शब्द दे दर्शन दीदार कर सकीए। भाई साहब हुणा ने जदों ये अमृत बचन पढ़े राज जोग तखत दियन गुरु रामदास, मैं हर साल जदों मंजी साहब सतगुरां दे चरण परसन जाना

महाराज जी, आप जी दे शब्दां दे अर्थ कर दियां, कथा कर दियां, उचारण करके, अर्थां करके, सुरत करके होईयां बेअंत भुलां सतगुरु बख्श देनियां जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।

दर्शन इशनान चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार होवे बोलना जी सिखां दा माणी वा मत उची मत पत दे राखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

अमृत बरख है भक्त जना की बर्तन नाम संत जना के मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर के नाम उदरे जन कोट।

हर हर जन के ओट सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर सराते, सुन समाद नाम रसमाते। आठ बहर जन हर हर जपाय, हर का भगत प्रगट नहीं शपाय। हर की भगत

उच्चेते ऊंचा भगवंत सगल समग्री तुमरा सूत्र तारी तुम ते हुए सो आज्ञाकारी तुमरी गत में तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी सलो।

अष्टपदी दस वस्तुले पाछ पावे एक वस्त कारण भी खोट गवावे एक पीना दे दस भी हरले तो मूढ़ा कहो कहा करे जिस ठाकुर से हो ना ही।

जावत जावत जन्म है मरा है, जिसके अंतर बस है निरंकार, तिसकी सीख तराय संसार, जो तुम भाने तिन प्रभ जाता, नानक उन जन चरण पराता, करो बेनती पार ब्रह्म सब जान, अपना किया आपे मान, आपे आप करत नबेरा, किसे दूर जनावत किसे बजावत नेरा, उपाव सियान सगल ते राहत, सबका जाने आत्म की रहत, जिस पावे तिस लै।

ष्टपदी जयप्रसाद क्षत्रिय मृत खाहे तिस ठाकुर को रखमन माहे जयप्रसाद सुगंध तल्लामे तिसको सिमरत परम गत पावे जयप्रसाद वसे सुख मंदर तिसे त्याय सदा मन अंदर जयप्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना जयप्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याय त्या मन जोग जयप्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तिसे त्यागत तबर लुभावे जय प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पहर ताक जस गा भी जाय जय प्रसाद तू सब कहू मान मुख ताको जस रसन मखान जय प्रसाद तेरो रहता धर्म

पंचा सासंग अमृत रस पुंछा सासंग सबकी रेन साधक संग मनोहर बहन साधक संग ना गत मुहताब है साधक संग सदा सुख पाव है साधक संग माया ते भिन्न सासंग नानक प्रभ सुप्रसन्न सासंग दुश्मन समीत साधु कै संग महापुनीत सासंग किस्यो नहीं बैर साधक संग ना बींगा पैर

ज्ञानी को बल बल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे में सर नानक ब्रह्म ज्ञानी आ परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी का सकल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथे ना जाए अदा खेर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर।

देवोपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चहवर नाम जपे गौ नाम। जो जो जपे तिसकी गत होए, सा संग पावे जन को है। कर कृपा अंतर उतारे, पास प्रेत मुक्त पात्र को तारे। सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम। काहू जुगत कितना पाइय, धर्म नानक तिस मिलै, लिखिया तुर कर्म।

राष्ट्रपति संत के दुखन यार जा घटे, संत के दुखन जमते नहीं छुटाए, संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन मतो ए मलीन, संत के दुखन सो बाते हीन, संत के हाथे गो रखे ना गोए, संत के दुखन थान भ्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जे करे नानक, संत संग नंदक पी तराय, संत के दुखन ते मुख पवै, संतन के दुखन काग जो लवै, संतन के दुखन सर्व जोन पाए, संत के दुखन त्रिगत जोन किरमाए, संतन के दुखन तृष्णा में जलाय, संत के दुखन सब गोशलाय, संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच नीच आए, संत दुखी का था को नाहे, नानक सदभाविता ओए भी गत पाए, संत का नंदक महत दाई, संत का नंदक इंट करना पाई, संत का

संत का दुखी ना मरे ना जी भाई है, संत के दुखी की पुजे ना आशा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत का दुख ना दृष्टक होए, जैसा भाव है तैसा कोई होए, पया गिरत ना मेटा कोए, नानक जाना सच्चा सोए, सब कर तिसके वो करने हार, सदा सदा तुसको नमस्कार, प्रभु की उस्तत करो दिन।

है, सो सेवक हो गए स्थिर डराय, जैसा सत ऐसा दृष्टाया, अपने कार्ज में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजया, गुर प्रसाद तत्स बुझया, जब देखो तब सब कुछ मूल, नानक सो सुखम सोई असूल, न के जन्मे न किश मरे, आपन चलते आप ही करे, आपन जामन दृष्ट अंदृष्ट, आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ, आपे आप सकल में आप, अनुग जुगत रज था भूथाप, अविनाशी नाई किश खांड।

सुप्रसन्नष्टपदि अविनाशी परम मनमे राघमानुकीतु प्रीत्या तिस्ते परायणाय कृष्णोये सर्व निरंतर एको सोये अभे भिन्नाय अभे दाना गहर गंभीर गीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शांद तेरे की चरणी पाओ नानक मन एह नाओ मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरन भरन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर अणत रूप मंगल सत जाके सर्व थोक सुनिए घर ताके राज में राज योग में जोगी तब मैं तविसर ग्रस्त में भोगी त्याय त्याय भगत सुख पाया नानक तिस प्रका कने अंतरा पाया।

सेवक नाम कारंग सेवको प्रपालनारा सेवक ही राखे निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभुतारे नानक सो सेवक सा समारे अपने जन का प्रता ढाके अपने सेवक ही सरबर राखे अपने दास को दे बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपद राखे ताकि गदबिंद को न लाखे प्रभु के सेवक काव को ना बहुछाए प्रभु के सेवक पूछते उचे जो प्रभु ने सेवा लाया नानक सो सेवक दैत सब प्रगटाया निकी कीरी मैं कल राखे भस्म करे लश्कर ओ कोट लाके जिसका सासना काट दे आपता को राख देकर हाथ मानस जतन कर दबो भांत जिसके करता बिरथे जाद मारे ना राखे अवरना कोए सर्व जिया का राखा सोए काए सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभ लाख बिडाणी बारंग बार बार प्रभ जपिया पी अमृते मंतंत्र पिया नाम रतन जन गुरमुख पाया तिस्क शबर नाई दृष्टाया

शरण गुरुदेव एवं रतन जन्म गावे उदार हार हर सिमर प्राण आधार अनुग भावना छुटन हारे सिमरत सास वेद विचारे हर की भगत गुरु मन लाए मन मंचत नानक फल पाए संगना चालस तेरे तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सुतमीत कुटम अर बनता अंते कहो तुम कमन सनाथा राज रंग माया विस्तार अंते कहो कमन छुटकार असस्ती रथ सवारी झूठा डम झूठ पा सारी जिंदिए तस बुझे ना बेगाना नाम विसार नानक पछताना गुर की मातू ले याने भगत बना बो डूबे सियाने हर की भगत गुरु मन मीत निर्मल होय तुम्हारो जीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के गिल बिख जाहे आप जब अबरा नाम जपावो सुंद कै दरा तगत पावो

पूरा मत पूरी अमृत जागी दृष्ट दर्शन पेख तो उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक प्रवान अंदर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसे सोत निहाल तागे निकट न आपद काल अमर भय अमरा बद पाया साध संग नान घर ते आया सलोक ज्ञान अंजन गुरु दिया अज्ञान देर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रकाश अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एक सघाट माहे अनक रंग नाना दृष्टा हे नाव अनित अमृत प्रभु का नाम देही मैं सगा विश्राम सुन समाध अनहत नाद गहना जाइया चर्च विसमाद तीन देखे से आप दिखाए नानत जन सोजी पाए

भावेतालय समाय इसते हुए सुना ही बुरा बुरा कहाओ कने कशकर आप भला कर दूता तने की आप जाने अपने जी की आप साज धारी सब साज ओत बोत अपन संगराज ताकि गतमित कही ना जाए दूसरो ता सोजी पाए तिसका किया सब प्रवान गुरप्रसाद नानक एहो जान जो जाने त सदा सुख होए आप मिलाए लय प्रभ सोए ओतनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिसर भगवंत धन धन धन धन आया जिस पर सा सब जगत राया जन आवन का यह स्वभाव

गौ अष्टपदे पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सा सिमरो गोविंद मन अंतर गुदरा चिंद आस अनित दया गोदरंग संदना की दूर मन मंग आप छोड़ बेंदी कर हो सांग अगन सागर तरह हर तन के बरले हो पंडार नान गुरु पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सांग पाज परमानंद नरग निवार उदारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जागे रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंग बार नानक जी का एह आधार उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाल ए रतन सुनत कमावत होत उदार अवतरे लोके निस्तार सफल जीवन सफल तागा संग जागे मन लागा हरंग जय जय शब्द अनाहत बाजय सुन सुन अंध करे बरबगा जय प्रगटे गोपाल महाप के माथे नानक उतरे तन के साथ है शरण जोग सुन शरणी आए गर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर भय समरेन अमृत नाम सा संगलैन सुप्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण हुई सेवक की सेव आल जंजाल बिगाड़ते रहते राम नाम संरचना कहते कर प्रसाद दया प्रभता हरी नानक निभि खेब हमारी प्रभ की उस्त करो संत मीत सावधान एकागर चीत सुखमनी सहज गोविंद गुरु नाम जिसमन बसे सोत निदान सर्विच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए

जाय तीर्थ नहावा जे तिस भावा विण भाणे के नहाय करी जेती सिरठी उपाई वेखा विण करमा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर मानक जे एक गुर की सिख सुनी

अगम अगम असंख लो असंख कह सिर पार हो अखरी नाम अखरी सलाह अखरी ज्ञान गीत गुण गा अखरी लिखण बोलन बान अखरा सिर संजोग बखान जिन एह लिखे ते सर नाए जे फरमाए तिप तिप पाहे

पै जाए। धर्म खण काय हो धर्म ज्ञान खण का खो कर्म केते पावन पाणी वह संतर केते कान महेश केते भर में कार्त घड़िए रूप रंग के वेश।

भेद हथियार पाओ खलागन तपताओ भांडा पाओ अमृत तित टाल घड़िए शब्द सटी टकसाल।

त्रिवर्ग है, सर्ग है, अनिल है, अनाद है, अज है, अजाद है, जन्म है, वर्ण है, अपूत है, पर्ण है, अगंज है, अपंज है, अचूज है, अचांज है, अमीक है, रफीक है, अतंध है, अबंध है, निर्बूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अला

भूत है अछूत है, अलोक है अशोक है, अकर्म है परम है, अजीत है अपीत है, अबाह है अगाह है, अमान है निदान है, अनेक है फिर एक है, प्रजंग प्रयाशंद, नमो सर्वमाने स्वस्ति निदाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पहुणे, अनंगी नाथे निरसंगी प्रमाथे, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने।

संभवती स्वरूपे प्रपंगी प्रमाथे संभवती विभूते कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज हृदयेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज हृदयेश्वरं परम विद्धे नमो सहत्रपाने नमो अत्रमाने नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायण क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुधर्मे नमो रोग हरता नमो राग रूपे नमो साह साहं नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं स्नानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो

परम रूप पुनीत मुहूर्त पूर्ण पुरखे पार सर्विश्वरत स्वयं पव गण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरखे आदेश धर्म धाम सो परम रहते अभूत अलंख अपेस अंग रंग नरंग जा कह जात पावन नाम गर्भ गंजन दुस

अजाद हैं, चर परिशांत वे प्रसाद, सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता हर्वं भुगता सावल शांत वे प्रसाद। नमो नरकनाशे दैवं प्रकाशे नंगं स्वरूपे अपंखं विभूते प्रमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी नामे त्रिपंगी त्रिकाम

अमितो विभूत है के अमितो पासा है के आत्म प्रवाह है के चलंग नांग है के मितो पांग है मद प्रशांत व प्रसाद

माता पिता कुटुंब सह सिंह पित संग सबाइया कह दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया करमी सहज न उपजै विण सहज सहसा न जाए नह जाए सहसा कित संजम नह जाए सहसा कित संजम रहे कर्म कमाए सहसे जियो मलीन है कित संजम धोता जाए मन धोवो शब्द लग वर स्यो रह चित लाए कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै इह सहसा में जाए

वेदा मह नाम तुम सो सुनहे नाही फिर हे जो बेतालिया कह नानक जिन सच तरिया कूड़े लागे तिनी जन्म जू ऐ हारिया। जी हो निर्मल बार हो निर्मल बार हो ता निर्मल जी हो निर्मल सतगुर ते करनी कुमाणी।

जत जड़ाओ। शिव सगत आप उपाय कह करता आपे हुक्मताए, हुक्म रताए आप वेखे गुरमुख से बजाए, तोड़े बंधन हो वै मुक्त शब्द मानव स

सखी गृह मंत्र बनिया हर गाव मंगल ने सखिए सोग दुख न व्यापै गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना प्रजा पै अणहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हरस भोगो

परम सम्मान योग जुगो जुग अटल चवर शतर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन गोद विच साजे निवाजे गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ आप सारे बड़भागी हो धनता दे योग हो जो सतगुरां दी पावन गोद विच बैठ के सतगुरां दी पावन बाणी अमृतमई बाणी सरवण करके आत्मक आनंद माण रहे हो अपना ये मनुखा जन्म सफला कर रहे हो। आओ अज जो अमृत वेले सतगुरां ने पावन हुक्मनामा बख्शिया उस दे विचार आपां कर सकीए। विचार आरंभ करन तो पहला सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज जो सतगुरां ने पावन हुक्म बख्शिया उस दे विच दो सलोक दूजे पातशाह धन धन गुरु अंगद देव साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन रचना तो उच्चारण किते हुए अते पौड़ी तीजे पातशाह धन धन गुरु अमरदास साहिब जी दी पावन रचना तो उच्चारण किती हुई है। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 791 792 उत्ते ए पावन हुक्म ये पावन सलोक ते पौड़ी गुरु ग्रंथ साहिब विच सुशोभित हन। आओ आपा विचार कर सकीए। सतगुरु सच्चे पातशाह जी जो सलोकां विच बख्शिश करदे ने जदों आपा वार ते पौड़ियां सलोक ते पौड़ियां पढ़दे हां वार पढ़दे हां सलोकां दा मूल पौड़ी विच हुंदा है भाव मूलक जिहड़ियां हैगियां ओ पौड़ियां ने ते ढुकवे सलोक नाल सतगुरां ने लाए ने। पहले सलोक विच धन गुरु गुरु अंगद देव साहिब सच्चे पातशाह जी बख्शिश करदे ने किसी ही कोई कोई मंज निमाणी एक तो किसी कोई कोई ये परमात्मा जी किसी का कोई सहारा है किसी का कोई सहारा है भाव यह भी किसी ना किसी का कोई ना कोई सहारा हुंदा है। सारे लोग अपने अपना सहारा तक के रखते ने। मैनू जे कि भीड़ पै गई तो अपने सहारे नू तक के रखते ने भी यह मेरा सहारा है यह मेरे भीड़ पैण च कम आवेगा। लोगों ने बड़े सहारे बनाए हुए ने। गुरदेव पातशाह जी कहते ने वाहिगुरु जी मेरा तो एको ही सहारा है किसी का कोई सहारा है किसी का कोई सहारा है। मैं तो एक निमाणी जी की जी विस्तरी हैगी हाँ तो मेरा होर कोई सहारा नहीं है। सारियां नूं बड़ा माण हुंदा है भी जे किते कोई मेरे ते भीड़ पै गई मेरा भरा मेरा माता पिता मेरे रिश्तेदार मेरे मित्र प्यारे वो कम आउणगे। पर सच जानियो साध संगत जी कई बार जदों बंदे नूं भीड़ पए वह भी साथ छड़ जांदे ने। क्यों की कारण है आपां गुरबाणी नूं पुछिए। सुख में आन बहुत मिल बैठत

देखना चाह रहे हो लाइट क्या है, लाइट की है सच कि अंधेरा की है झूठ। लाइट लाइट लाइट के नाम समझौता दिखेगा और रब का दरवाजा दरवाजा दिखेगा। जंगल साडा घर होवे तो होवे मस्या की रात, एक दसा का अंधेरा एक मस्या की रात का अंधेरा, तो फिर कोई चुगी लभ के दसे भी सही अपना घर से लभ के दसे नहीं लभ सके। और जरूरत कहनी पड़ेगी लाइट की, लाइट होगी घने जंगल विचों कि अपना घर लभ जाए। इस तरह संसार और अंधेरा है, लाइट है सच की, जिदे को सच होगा ओनू घर लभ जाएगा, जिदे को सच नहीं होगा वह अपना घर कभी भी नहीं लभ सकेगा, कभी भी नहीं लग सकेगा। तो मेरे साहब जी ने सात कहो सुन लो सब, तो दुनिया के लोग एक सच सुनो कि दुनिया च झूठ किन्ना है अंधेरा किन्ना है। मेरे पहले पातशाह जी ने लिखता के पूर्व कुमार को सच चंद्रमा पीते नहीं कह चले और पाल सुनी हुई अंधेरे रहा ना को। साहब जी फरमाते हैं कि मैं पालदी मैं थक गई हूं पर मैनू हनेरे ग्राह नहीं लगता, इन्हें होर अंधेरा जिम्मे मस्या की रात में चंद्रमा नहीं दिसता, इस तरह ही होर पालज अंधेरे सच कि नजरी आंदा ही नहीं। करा कि पूछा तुम क्यों आयो, आशा मैं सच लभण वास्ते चलिया। पूर उमान वर्त्या आओ पालन चलिया संसारा, मैं सच में लभण वास्ते तुरंत कि कितने सच मिले पर सच थोड़े को भी है नहीं, तुम भूल गए विजय सिद्धियों पास कोई सच नाल तुरया आया। सच बोलने वाले ने तकीलों से बिठा, सच बोलने वाले ने उपजी देव बिठा दिता, सच बोलने वाले ने ग्वालियर के किले कैद कर दिया, सच बोलने वाले ने दिल्ली चांदनी चौक से शहीद कर दिता, सच बोलने वाले ने एक एक बंद छोटे किया गया, टोकरियां लाइया गई चर्खियां से चढ़िया गया कुंबिया गया, जिन्हें रूह कुंबी का इन्हें सिखा कुंबिया जाता है। वह सीन सी उसे जरूर से किसी ने मिशन करते सिर्फ सच का इंसाफ चाहते सन, झूठे खिलाफ बगावत करते सन, झूठ नहीं थी सच सच है इंसाफ करना है ये खिलाफ एक गौरव सह नहीं सकी। एक पता कर दिता कि जो जिंदा फड़ावे उन्होंने 80 रुपये इनाम से जोड़ा फिर लै आए उन्होंने 40 रुपये इनाम दिता जाएगा। इन्हीं सच के खिलाफ गौरव हो गई पर फिर ही सच कह रहा है वह सच का सदका तुम सारी इतने बैठे हो। हम जिंदगी वास्ते लाइट लैनी है, लाइट कौन देगा गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह, सारे खड़े हो गई लाइट तो सबना नहीं चाहिए है, खड़ाक हो गए कतर हो गए तो बिजली पैदा होगी, दूरों चीज डिगे तो अग विचो निकलती है, पत्थर से पत्थर मारो अग निकलती, डब्बी की पीली में घसाओ मसाले उसे तो अग पैदा हो जाएगी, वैसे मुंह च पालो कोई डर नहीं लेकिन कसावत अग होगी। जब तुम बोलोगे उदो गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह के तेज का प्रकाश तुहाडे हिरदे च आ जाएगा, क्योंकि इस बाणी के नाल कनैक्शन कलगी कर सच्चे पातशाह दा अकाल पुरख। इसलिए ये बाणी बोलन के नाल धुनी के नाल अंदरों कोई चीज ऐसी होगी जी आनंद दे जाएगी, हलारा दे जाएगी। इस सारे पड़े

दूर करवाते हैं। एक कार प्रभ हमें बनाओ एक पाठ ए नोत बिठायो आशीर्वाद। जिसे गौरव आपकी मशीनरी भेजे उसका सारा भेद दिता जाता कि उसे आ नुकसान इस तरह उसे डाके वजते ने इस तरह उसे रिश्त होंगी है। हाँ इस तरह के लोग उसे भेजे जाते हैं तो प्रबंध चंगा हो जाए। यह संसार बड़ा विशाल है ये कर्म बड़े सन जिन्हें हिंदुस्तान च कर्म धर्म के धर्म सन उन्हें किसी देश में है ही नहीं। जे घर के पांच जी ने तो पंजा का अपना अपना वखरा वखरा धर्म वखरा वखरा इष्ट है। इसे 33 करोड़ देवता बन गया कि पूजन वाले बहुते सन तो गुरु लभते नहीं सन और फिर गुरु ज्यादा हो गए पूजन वाले घट गए। हाजूर कहते मैनू यह सारा भेद दस के मैनू सारा राज दे के अकाल पुरख ने इस लोक से बिठाया तो मैं सबना का राज खोलन लगा सच का आसरा लै चंगा की रखवाली करा जिन्हें से जुल्म होंगे उन्होंने थां अपने पुत्र कुर्बान कर देंगा उन्होंने बचा लूंगा पर जेड़े जालम ने उन्होंने मैं दंड दिया सजा देंगा। मैं किसी का भी लिहाज नहीं करना लिहाज करा केवल सच का करा दूजे का किसा करना यह कारण सब हमें बनायो भेद पाठ ए लोग उठायो भेद दस के जिन तिन कही सदन उजरो जिन्हें मैनू मेरे वाहिगुरु ने कही है मैं सारे कह लगा मुखादर करके ये चीज याद रखनी बिंद बिंद किस नायक ना करो एक दिन भेक नहीं करना और एक वह मिट भलेखे च नहीं करना यह मैं बिल्कुल नहीं करना और ना सिख न कर्म देना बिंद बिंद किस नायक ना करो मैं ना भेक करना तेना वहम करना एक अकाल पुरख की कोट दिखती है कहांगा कि लो प्यारे तो सारे कह रहे हैं।

0: भक्त जना की बर्तन नाम,
1: संत जना के मन विश्राम,
0: हर का नाम दास की ओट,
1: हर के नाम उदरे जन कोट,
0: हर जस करत संत दिन।

0: पावे सोई करावे।
1: इसके हाथ होए ता सब कुछ ले,
0: जो तिस पावे सोई करे।
1: अनजान बिख्या मैं रचे,
0: जे जानते अपने आप बचे।
1: पर मैं भूला दे दिस धावे,
0: निमित माहे चार कुंज फिर आवे।